दृष्टि अनुमानी तराई में घर को घर भाईपेटर छर्क आग लगे भाई केटाकेटी मचिस खेलाइए अर्क रिस्क भो अलग रिस्की भाई फिर एसिड सर्क को सर्प को शरीर में पर्यो सर्प को ज्ञान भी आन सकता अथवा घाइटे बनाकर पड़े अब तस्त अल्टरनेटिव जानू भाग साफ सफाई में ध्यान दिने र सर्प देखी में आंखों जो लिये तुरंत निगमित वन कार्यालय अथवा प्रहरी प्रशासन अथवा नगरपालिका या सर्प उद्धारकर्ता

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. City FM. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihan ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदुत्तु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: टोलू एफ एम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: Soundcheck. Studio FM. Studio time.
2: It's 8 AM. दिशाको 8 बजे.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु कुंभू.

0: श्री भाकुरा प्रश्न विचार जीओ रेडियो नेटवर्क।
1: घर बाट निस्किनु अघि धारा बिजुली का

साझ पर्दा घर छोड़ी गाँव घूम जानून बाघ भालू बैरा हाथी चितुआ पसे पछी धन जन को क्षति हुन्छ चुपचाप बसे।

7,31,34,84 तीन वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्यूटर इंजीनियरिंग र 18 महीने अमिन कार्यक्रम में कहीं सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला।

0: उल्लू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Sanche Surya Film Studio Time
2: It's 4 PM अपराह्नको 4 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दूध को नगर पालिका 5 सोलु कुंभू

सजरी बना मच को मनल गल छोड़ेना सजरी बना मच को मनल गल छोड़ेना आज तो ना बात न सही जानो भजेना राइफल को की